0: Leica Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to take my...
4: Hey, boy!
5: Coast Guard, we're stuck.
6: Okay, help's on its way.
5: Hold on, mate.
7: Shoes, tide, phone.
8: Back before dark, love. Okay.
9: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
0: Subscribe to the Leica Radio YouTube channel by searching Leica Radio UK.

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंधगोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी होसी।

हत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश दिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस, लख

जोर ना जीवन मरण नहीं जोर, जोर ना राज माल मंसोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोन पंच परवार।

वो चला हाय कुछ ऐसी अदा से वो मेरा यार चला, हर तरफ शोर हुआ मार चला मार चला।

0: लता जी और बाबला मेहता की आवाज में था ये गाना और ये खूबसूरत म्यूजिक दिया है शिव हरि ने और यशराज चोपड़ा की फिल्म चांदनी से लिया था हमने ये गाना और उससे पहले तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा हीरो नंबर वन फिल्म का गीत आपको सुनवाया और लीजिए इसी के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स और ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर है आप सबका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के एक बजे तक सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी गुड मॉर्निंग
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप देन आज £1 आपको देगा 127.9 भारतीय रुपए
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है Leica Radio
3: तथास्तु
4: Big Boss 20 starting from Sunday the 6th of September only on Colors TV Sky Channel 706 Virgin Media 826 EE 396
5: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का perfect destination Rakhi और Ganesh Idols अब available हैं सभी Falcon stores पर Onam संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds सिर्फ £13.49 Suhana Khaman Tokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99 Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96 S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99 piece से शुरू और Herdsman Tuck heat 20 kg sir 10.99.
6: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
7: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert Featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor Playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
8: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
10: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
11: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes. Strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
12: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour.

0: From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: सिर्फ दो दिन बाकी इस जन्माष्टमी कान्हा के जन्मोत्सव की खुशियां मनाइए जैमिन फूड्स के साथ. जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना.
2: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: Hey, Katas, you too. So, इस बार बिग बॉस दे रहे हैं सभी घर वालों को एक नहीं दो दो चांस. So, सेफ खेलने का नो नो चांस. बिग बॉस में इस बार मिलेगा बरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान. Katas, तू मेरी जान.
4: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396.
5: होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है.
2: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
6: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: रस मोहम्मद रफी के साथ आवाज मिला रही हैं सुमन कल्याणपुर और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है। ये गाना जाता है मेरी ओर से आप सभी के लिए जो इस शो में मेरा साथ दे रहे हैं और ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिन्हें जरूर पढ़ूंगी, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो अब आपको सुनवाते हैं आज के प्रमुख समाचार और आपको ये भी बता दूं कि इस शो में ऋतु शर्मा है आपके साथ सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है भारत से। एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने इतिहास रचा है। भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा नॉन मेडिकल ब्रांच की इस रैंक तक पहुंचने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाइयां। इसके अलावा SCO सम्मेलन में PM मोदी का संदेश ये है कि उन्होंने कहा है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर दोहरे रवैये यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स को खत्म करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने देश में 7.8% GDP ग्रोथ का जिक्र करते हुए डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए यानी कि वेड इन इंडिया और स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने नीट विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी FIRs को रद्द करने का आदेश दिया है और रेल मंत्रालय ने राजस्थान और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सूरत से उदयपुर सिटी के बीच नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। सुनवाते हैं आपको कुछ इंटरनेशनल खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य झड़पें और तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मिसाइल लॉन्च सिस्टम पर हमलों के बाद उसे एक असफल राष्ट्र यानी कि फेल्ड नेशन करार दिया है। उधर बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो दिसंबर तक अपने देश खुद वापस लौटेंगी और उनकी वापसी को किसी प्रत्यर्पण संधि से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नेपाल में बारिश और बाढ़ के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। भारत सरकार वहां फंसे अपने सैकड़ों नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही है। खेल बिजनेस से खबर सुनाते हैं आपको। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 39 ईयर्स की उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है और भारत की GDP ग्रोथ पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून में 7.8 पर पहुंच गई है, जिससे RBI को 7% के अनुमान को पीछे छोड़ दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.2% और सर्विस सेक्टर में 10% की बढ़त दर्ज की गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लता जी की आवाज में खूबसूरत गाना फिल्म रजिया सुल्तान से लिया था और आप सबके ढेरों मैसेजेस मिलते जा रहे हैं। थैंक यू मालती जी लिखती हैं जय गणपति देवा। यस आज कुछ है मैं बताऊंगी आपको कि आज कौन सा त्योहार मना रहे हैं। भाई भारत त्योहारों का देश है और खास तौर पर ये जो मौसम होते हैं इसमें हर रोज कुछ ना कुछ होता है और आज भी कुछ है उसके बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल तो थैंक यू कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं देसराज बसंत जी, आपको हमेशा ही बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ भेजते हैं, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने आज बहुत अच्छी चिंतन के लिए कुछ मटेरियल भी भेजा है, लेकिन आज का चिंतन मेरे पास तैयार है तो मैं इसे जरूर कल शामिल करूंगी। थैंक यू इन एडवांस, कल जरूर इस चिंतन को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। थैंक यू शोभना राय जी, थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू मानु जी, तोजी जी, थैंक यू संध्या भावसर, थैंक यू संतोष जी, हिमांशु पटेल जी, गुरुदेव गांजा स्वागत है आपका, सत्यनारायण सैनी जी भारत से हमारा साथ दे रहे हैं, राजेश जी थैंक यू कहते हैं रोज सुबह स्टूडियो आने का अनुभव कैसा लगता है। अच्छा है, आप सबसे जब मिलना होता है तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है और देखिए पता ही नहीं चला आज वेंसडे आ गया। साल कहाँ से यार, हफ्ते का आधा दिन, हफ्ते का मिड आ गया है, मिड वीक हो गया है ये कहना चाहिए मुझे, सो अच्छा लगता है। इसके अलावा भारत गंगाराम जी स्वागत है आपका, मृदु जी थैंक यू, महेंद्र जी, नरेंद्र पांचाल जी, हरीश खत्री जी, हंसा जी, अर्जुन जी, हेतल सोलंकी, अनिल सोनी वियाना से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। एंड हमारे गिरीश जी कहते हैं क्या गीतों की आपने शुरुआत की है कि आनंद ही आ गया, बस आपका मैसेज पढ़कर मुझे भी आनंद आ गया, थैंक यू एंड थैंक यू संध्या भावसर वंस अगेन। तो वही साथ देते रहिए, क्या करें अगला गाना, चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत है मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उस गाने को बजाने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर। साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com.
2: ये है लाइका रेडियो,
3: वन परफॉर्मर के सामने का प्रॉब्लम से कहना क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया, खिलाड़ियों के खिलाड़ी,
4: काउंटलेस पर्सनालिटीज,
5: जिंदगी बर्बाद हो गया,
6: अ होल यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट,
7: चैनल में फंक्शन रखा हुआ है,
8: सुनील ग्रोवर लाइव यूके टूर 2026,
9: 29th October ओवर अरेना वेम्बली लंदन, 31st October मैटियोली अरेना लेस्टर,
10: फ्रॉम गुत्ती टू डॉक्टर मशहूर गुलाटी, फ्रॉम रिंकू भाभी टू ब्रांड न्यू सरप्राइजेस, एक्सपीरियंस सुनील ग्रोवर लाइव ऑन स्टेज इन द यूके,
11: प्रोड्यूस्ड बाय इमेजिन एक्स ग्लोबल एंड टिम्स मीडिया प्रोडक्शंस,
12: सपोर्टिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग अवेयरनेस। Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
13: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
14: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
15: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
16: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
17: Dubai is the place. 11,
16: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
18: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
19: From Southall Streets to the London Rain. From the Tube to your sofa again.
5: UK, the big bang of entertainment, Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows, and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
19: We're finally going home for the wedding.
20: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
19: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
20: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
19: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
20: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
19: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
21: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
22: Listen our little Garba stars, taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday, 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 thi 10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call Peaches 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner, Leica Radio.
23: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
24: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
25: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
26: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
25: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
26: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
27: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
28: Four beers, please, garçon!
27: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
29: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
30: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 AM Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: The wait is finally over.
2: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
1: Mirzapur is coming to the big screen.
3: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
1: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
4: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
1: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, releasing in cinemas 4th September.
3: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
5: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
0: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबाडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. It's back and it's bigger.
6: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
0: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
6: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
0: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
7: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
7: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
9: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.

0: Rock to Winston Green. Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
2: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Leica Radio.
3: Mm-hmm.

0: चाहे आरडी बर्मन किशोर कुमार का कॉम्बिनेशन हो या बप्पी लहरी और किशोर कुमार का, गाने एक से बढ़कर एक हैं, आपको थिरकने पर मजबूर कर ही देते हैं, जैसे कि ये गाना था। आप सबने पसंद किया, सो थैंक यू। एंड विजय गुडूरी जी, आप आज बारिश के कारण गोल्फ खेलने नहीं जा पाए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, पर मेरे लिए तो अच्छा है, आप अब सुन पा रहे हैं मेरा शो। सो थैंक यू आपके साथ देने के लिए। और इसके अलावा सलमा जी कैंट में हमें सुन रही हैं, फारूक मोहम्मद जी, हिमांशु पटेल, गुरुदेव गांजा एंड प्रज्ञा जी, जितने भी साथी साथ दे रहे हैं, सुनते रहिए, ये गाना ले जाएगा न्यूज तक।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और इस शो में आज भी ऋतु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। स्वागत है आपका इस शो में। और ये समय है चिंतन का, चिंतन यानी कि आज का विचार। आज के चिंतन में बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी जो अक्सर हम सब करते हैं। जैसे हमको पता है कि जो हम खाना खाते हैं वो अगर एक या दो दिन में हमारे शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकला तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। और इसी तरह से जो भी हम पीते हैं वो भी कुछ घंटों के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर वो भी नहीं निकला तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। जो हम सांस लेते हैं वो भी कुछ सेकंड्स में बाहर निकल जानी चाहिए। अगर नहीं निकली तो क्या होगा, हम मर भी सकते हैं, बीमार होना तो दूर की बात है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और इसी तरह से कुछ नेगेटिव बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या वगैरह वगैरह, जिनको हम अपने अंदर दिन, महीनों, सालों तक रखे रहते हैं, और इन नेगेटिव विचारों को अगर समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकाला तो क्या होगा, ये हमें बीमार बना देंगे, हमें मेंटल पेशेंट बना देंगे, हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। निर्णय हमारा ही होगा कि हमें क्या करना है। चलिए इन सब बातों से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ जो हमें इन बातों को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगी। शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरुजी थे। उनके पास एक बार एक लड़का पहुंचा, बहुत ही निराश, गुस्से से भरा हुआ, चिड़चिड़ा सा। गुरुजी ने उसे देखा, बोले, भाई क्या परेशानी है तुम्हें? उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों से बहुत नफरत करता हूं, जानते हैं क्यों? उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं महीनों से उनका दिया हुआ धोखा भूल नहीं पा रहा हूं। मेरा मन हर समय सुलगता रहता है। गुरुजी ने उसकी सारी बातें शांति से सुनी और फिर उन्होंने उस युवक को एक खाली ग्लास दिया। उसे ग्लास पकड़ाया और उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया। युवक कहता है, गुरुजी क्या कर रहे हैं आप? गुरुजी बोले, थोड़ा शांत रहो। और कहा, इसे ऐसे ही उठाकर थोड़ी देर तक पकड़े रहो। युवक ने ग्लास पकड़ लिया। 5 मिनट बाद गुरुजी ने उस लड़के से पूछा, कैसा लग रहा है? युवक बोला, कुछ नहीं लग रहा, ये ग्लास तो बहुत हल्का है, आपने मुझे क्यों पकड़ाया है? आधे घंटे बाद गुरुजी ने उससे फिर पूछा, अब कैसा लग रहा है? युवक बोला, हाँ अब थोड़ा हाथ मेरा थक गया है, लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? 2 घंटे बीत गए, युवक का हाथ दर्द से कराने लगा। उसने कहा, गुरुजी मेरा हाथ अब पूरी तरह से सुन्न हो चुका है, मेरा कंधा भी बहुत दुख रहा है, और अगर मैंने इसे थोड़ी देर और पकड़े रखा तो मेरा ये हाथ बेकार हो जाएगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ग्लास को नीचे रख दो। युवक ने तुरंत ग्लास मेज पर रख दिया और राहत की सांस ली। और फिर गुरुजी ने उस लड़के को समझाया कि देखो, पानी का वजन तो कभी भी नहीं बदला, लेकिन तुमने इसे जितनी देर पकड़े रखा ना, ये उतना ही भारी होता गया। खाना, पानी और हवा की तरह कड़वी बातें और
नकारात्मक विचार भी बाहर निकालने के लिए ही होते हैं। अगर तुम किसी से घृणा और ईर्ष्या को कुछ मिनट रखोगे तो तुम्हें तनाव होगा, कुछ दिन रखोगे तो बीमार पड़ जाओगे, और अगर सालों तक पकड़े रखोगे तो तुम्हारा मन मानसिक रूप से अपाहिज हो जाएगा। और ये सुनते ही उस युवक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने समझ लिया कि दूसरों ने जो बुरा उसके साथ किया सो किया, लेकिन वो खुद के साथ ज्यादा बुरा कर रहा है। उन बातों को हर वक्त याद करके, उन बातों को हर वक्त सोचकर वो अपने शरीर को, अपने मन को तकलीफ दे रहा है। और उसी दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने मन से ये सारी बातें हटाने की कोशिश करेगा और अपने मन को शांत रखेगा। क्योंकि जब कोई बात हमारे साथ हो जाती है, वो इंसान तो करके निकल जाता है, लेकिन हम उस बात को सोच सोच कर खुद को परेशान करते हैं। कभी कभी इतने चिड़चिड़ा जाते हैं कि घर वालों के प्रति भी व्यवहार अच्छा नहीं रहता, लोगों को भी लगता है पता नहीं क्या हो गया है। तो इन सब का एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि जिसने जो किया उसे उसका फल ईश्वर जरूर देगा, लेकिन आप अपने साथ खराब मत कीजिए। अपने मन को शांत रखिए, प्रसन्न रहिए, और उस बुरी बात को, बुरे वक्त को भुलाने की कोशिश कीजिए।

0: आज का चिंतन हमें चिंतन करने पर, विचार करने पर मजबूर करता है कि जिसने आपको दुख पहुंचाया है वो इतना खास नहीं कि आप हमेशा उसके बारे में सोचें और खुद को दुख दें। उसे माफ करना या ना करना ये आपके बस में है, लेकिन उसके बारे में सारा दिन सोचकर और उस बात को सोचकर अपनी तबीयत, अपना दिमाग खराब बिल्कुल भी ना करें और दूसरे कामों में अपना मन लगाएं जो आपको खुशी प्रदान करे। यही था आज का चिंतन, और चिंतन के साथ जो गीत था वो लिया था मैंने फिल्म काजल से, जिसे आशा भोसले ने गाया था और खूबसूरत धुन बनाई थी पंडित रविशंकर शर्मा ने, जो कि जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और आज का चिंतन आप सबको अच्छा लगा है, गीत भी आपने पसंद किया है। थैंक यू किरण जी हैरो से, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू केतकी जी, आपको भी अच्छा लगा आज का चिंतन और गीत। थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू संध्या बावसर जी, थैंक यू शेखर आनंद जी, थैंक यू विजय गुजूरी जी, महेंद्र बाजारिया जी, थैंक यू विनोद जी, निर्मला जी, हरविंदर जी, थैंक यू प्रकाश सुथार जी, आपका मैसेज मिला है। थैंक यू जैस्मीन जी, आपका भी मैसेज है। थैंक यू रोहित सलमा जी, फारूक जी, हिमांशु पटेल, जितने भी साथी साथ दे रहे हैं, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए और चिंतन को पसंद करने के लिए भी। चलिए अब लौटते हैं बैक टू बैक गीतों की ओर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको याद दिला दें कि आज 1 pound के बदले में आप ले सकते हैं 127.9 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी लागू रहेंगे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September. Only on Colours TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
2: List up. Navratri ni dhammakedar raton mate theja ready. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Navratri Festival 2026, 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Leicester. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Leica Radio.
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or you.
5: Southall Travel, at all protected.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
5: Save an extra 10% with code ROMFREE. 10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday.

0: लीजिए मोहम्मद रफी साहब के आवाज में बैक टू बैक के दो गाने आपने सुने और आप सबने इन गीतों को पसंद भी किया, तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपको बताते चलें, जिन्होंने ढेर सारे मैसेजेस भिजवाए हैं उसमें नाम है वीरेंद्र चौधरी जी आपका, कहते हैं गाने मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, सो थैंक यू विजय गुरुरी जी, उम्मीद का गाना तो आप सबका फेवरेट है, मैं जानती हूँ, इट्स माई फेवरेट टू। गुरुदेव गांजा थैंक यू, उलाशी भावना जी, दिनेश पोपट जी आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है आप सबका।
1: Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: यस, ये गाना जब फिल्म आई थी तो क्या सुपर डुपर हिट हुआ था, और भाई शादी की बारात आ रही हो और उसमें ये गाना ना बजे, ऐसा कैसे हो सकता है। सुपर हिट फिल्म थी ये मुमताज और शशि कपूर की। और आपके मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। असद कहते हैं कि बैक टू बैक रफी साहब के गाने सुनकर मजा आ गया, और बजाइए। बिल्कुल, अभी तो आपका मेरा साथ काफी लंबा है, जरूर कोशिश करूंगी और भी अच्छे अच्छे गाने चुनकर आपको सुनवाऊं। भावना, आपको अमिताभ बच्चन का गीत पसंद आया, थैंक यू। और हमारे साथ है जहीर जी, कराची से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। विजय गुनोवा जी, आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं तो सुनते रहिए, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने जा रही हूँ एक खास इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं मर्सिडीज बेंज वैंस और लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स के सहयोग से हम आपको ये बता रहे हैं। खास इन्फॉर्मेशन है, जब आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं होती, आपकी रोजी रोटी और इज्जत सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। और इसी सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैंस लेकर आया है अप टाइम प्रॉमिस। आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेक फायदों का एक पैकेज, जैसे 24/7 रोड साइड असिस्टेंट, ज्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भी बहुत कुछ। यानी आपकी वैन के खराब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो सब एक ही जगह अब आपको मिलेगा। मर्सिडीज बेंज वैंस आपके साथ है, साथ ही मर्सिडीज बेंज वैंस सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में और जानें। नियम और शर्तें लागू होंगी। मर्सिडीज बेंज वैंस अप टाइम प्रॉमिस कुछ पात्रता मानदंडों, वाहन की अनुकूलता और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयर से सर्विस कराने पर निर्भर करता है। नियम और शर्तें लागू होंगी जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कीजिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर।
1: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो व्हेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM, लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स।
0: तो £1 आज आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 103.6 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Leica Radio. This is Leica Radio. Podcast.
4: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colours TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96, एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
8: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेम्पल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
9: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
10: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
9: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
10: Also explore 2026 cruises
9: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.

मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की आवाज में क्या खूबसूरत गाना था फिल्म ममता से, और क्या धुन बनाई थी रोशन जी ने। और उससे पहले आपने अर्पण फिल्म का गीत सुना जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है। और अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो स्वागत है आपका इस शो में। और आपको बताती चलूं कि मैं ऋतु शर्मा सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी, और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं जो ये बता रहे हैं कि आप शो को एंजॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू।

0: देवी पंडित गौरांगी गौरी देवी जी और जो राम कथा कहने वाली हैं। तो आइए हम गुरु जी राज राजेश्वर जी से बात करते हैं और इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु जी, स्वागत है आपका लाइका रेडियो नेटवर्क पर। कैसे हैं आप?
1: रितु जी, जय श्री राम। बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छी हूँ, जय श्री राम।
1: जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है कि आपने एक समय देकर के मुझे आमंत्रित किया, और जैसे आपने बताया कि भारत से, उसमें भी एक अच्छी बात यह है कि अयोध्या की आवाज लंदन में गुजेगी, और ये पंडित गौरांगी गौरी जी श्री राम कथा अपने सिद्धाश्रम में करने जा रही है। उसका लक्ष्य ये रहा कि पहले तो प्रथम हम प्रार्थना के लिए, जो नेपाल में जो हुआ है उसके लिए, और नेपाल के लिए हम कुछ कर सके, इसीलिए श्री राम कथा का भी आयोजन है। और दूसरी बात है कि हमारे सिद्धाश्रम गुजरात में कम से कम 100 बेटियां पढ़ रही है आदिवासियों की, उनके लिए भी हम थोड़ा साथ सपोर्ट दे, कथा के माध्यम से गौशाला में साथ सपोर्ट दे। ये तो सब होगा ही होगा, मगर इंग्लैंड में लंदन के अंदर जो हैरो और वेमली के आसपास जो लोग रह रहे हैं, और अन्य जगह पे फ्रिंचली है, बारनेट है, कई जगह जो रह रहे हैं, वो भी श्री राम कथा का एक आनंद ले। और जैसे आपको पता है कि भव्य और दिव्य
0: जी
1: राम मंदिर अयोध्या में बना है, तो मैंने सोचा कि भाई अयोध्या की ही आवाज हम लंदन में क्यों नहीं लेके आए। अन्य वक्ता तो आते ही पूरे भारत से, पूरे देश से, गुजरात से, वृंदावन से, तो इस बार मैंने सोचा कि अयोध्या की आवाज लंदन में गूंजेगी कथा के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, अन्य जगह पे। और उसका एक कार्यक्रम सिद्धाश्रम में 4 से 8 तारीख तो है ही, मगर ये कार्यक्रम हम लक्ष्मीनारायण मंदिर में भी करने जा रहे हैं। एक कार्यक्रम हम इलफड़ के हमारे प्रिंस जी है, उन्होंने भी आयोजन किया है, मगर मूल कार्यक्रम जो है उस कार्यक्रम हम यहाँ करेंगे, जो इंग्लैंड के सिद्धाश्रम, जो संतों का गढ़ है, जो संतों का एक कहा जाता है कि भारत से निकला हुआ संत एक कहेगा कि भाई हम हमारे घर पे जा रहे हैं, तो यही कार्यक्रम है मूल जिसमें आपके साथ चर्चा करने का मौका मिला।
0: तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि श्री राम कथा तो ऐसी है कि उसे आप जितना सुने उतना ही कम है, और उसको सुनने में जो आनंद आता है उसे तो बयान ही नहीं कर सकते, और ये सब होने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है।
1: नहीं रितु जी, देखो समाज के अंदर आज शांति चाहिए, समाज के अंदर कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि भाई हमें कम से कम पीस मिले। आज देखो नेपाल में कैसी स्थिति बनी और ये वॉर चल रहा है, तो इस स्थिति में सिर्फ एक ही काम आता है, भगवान का नाम, और वो भी हमने दोपहर को 12 बजे से 2 बजे के लिए बीच में इसीलिए रखा कि जो लोग ओल्डरी पीपल है, जो रात को नहीं निकल सकते, शाम को नहीं निकल सकते हैं, तो इसीलिए हमने समय रखा है। और सिद्धाश्रम का तो एड्रेस सबको पता ही है, और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, यहाँ नंबर 22 पाल्मस्टन रोड हैरो में HA37RR ये पोस्ट कोड है। तो रितु जी, रेडियो के माध्यम से आप तो सुनोगे ही, मगर आपको भी प्रश्नों इनवाइट मैं कर रहा हूँ।
0: थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये अपॉर्चुनिटी मैं कहती हूँ कि किसी को भी गवानी नहीं चाहिए, जरूर जाइए आप इस राम कथा को सुनने के लिए। और मैं एक बार फिर से पता दोहरा देती हूँ, इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो, और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर लिख लीजिए 0208426 0678। फिर से रिपीट करती हूँ, इट्स 0208426 0678। ठीक है ना गुरु
1: जी? रितु जी, हाँ जी। एक चीज बहुत अच्छी बताई आपने, मगर जिस दिन हम शुरुआत कर रहे हैं ना, 4 तारीख से कृष्ण जन्माष्टमी है,
0: हाँ,
1: तो दिन में कथा होगी, हाँ, और रात को हम 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक भगवान कृष्ण,
0: हाँ,
1: का भजन कीर्तन धुन और मटकी फोड़े सब कार्यक्रम भी होगा, तो उसमें भी आपको और जो सुन रहे सभी श्रोताओं को आमंत्रित करूंगा।
0: जरूर कोशिश करूंगी, क्योंकि जन्माष्टमी का फास्ट तो मैं करती हूँ, तो अगर धूमधाम से आप सबके साथ मनाई जाएगी तो मजा दोगुना हो जाएगा।
1: आइए जरूर आइए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइका रेडियो का भी।
0: हाँ जी,
1: थैंक यू
0: गुरु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।

0: लता जी और रफी साहब के आवाज में था ये गाना, फिल्म का नाम दिल तेरा दीवाना। और आज ये गाना इसलिए सुनवाया क्योंकि आप जानते हैं माला सिन्हा है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और आज है 2 सितंबर, तो आज वर्ल्ड कोकोनट डे भी है। और आपको बता दें कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद है हेल्थ बेनिफिट्स और एग्रो इंडस्ट्री में नारियल के योगदान को लेकर लोगों को जागरूक करना। और अगर आप कोकोनट पसंद करते हैं तो आज आप खा सकते हैं। वैसे मुझे कोकोनट वाटर बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई भी कितनी भी अच्छी अच्छी ड्रिंक्स रखी हो और अगर कोकोनट वाटर वहां रखा हो तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं वो पी लूं, क्योंकि मुझे उसकी जो मिठास है, जो नेचुरल उसका स्वाद है, बहुत ही शानदार लगता है। और बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं जिसमें जब आप कोकोनट वाटर ऐड कर देते हैं ना तो स्वाद बढ़ जाता है। इनफैक्ट कई रेसिपीज ऐसी हैं जिसमें अगर आप कोकोनट वाटर डालें तो स्वाद कमाल का आता है। तो आज इंटरनेशनल कोकोनट डे भी है, आज वर्ल्ड कोकोनट डे भी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारत तो त्योहारों का देश है और इस मौसम में तो हर रोज कुछ ना कुछ होता है। तो आज हर षष्ठी या फिर कहूँ बलराम जयंती है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज की जो तिथि है 6, उसको हर षष्ठी या बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। और गुजरात में इसे रंधन छठ भी कहा जाता है। और ये क्यों होती है, दरअसल हर षष्ठी और बलराम जयंती आज ही के दिन होती है। और आप जानते हैं कि बलराम जी जो थे वो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई थे। और देखिए उनका जन्म श्री कृष्ण से 4 दिन पहले ही हुआ था। फ्राइडे को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और 4 दिन नहीं 2 दिन पहले हुआ था। षष्ठी के दिन बलराम जी जन्मे थे और अष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मे थे। और आप जानते हैं कि बलराम जयंती का बहुत धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बलराम जी जो हैं वो शेषनाग के अवतार थे, यानी कि श्री हरि विष्णु ने जब जब जन्म लिया उनके शेषनाग हमेशा उनके साथ रहे। श्री कृष्ण बनकर जब आए तो वो बलराम के रूप में शेषनाग उनके साथ आए। और जब उन्होंने राम जी का रूप धारण किया था तो आई थिंक लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग ही थे। सो आज का त्यौहार कई जगह पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आज के दिन हल और मूसल की भी पूजा की जाती है, उन्हें हलदर भी कहा जाता है बलराम जी को, और क्योंकि वो खेती और किसानों के रक्षक भी माने जाते हैं। और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी कथाएं भी हैं, आई एम श्योर आप सब जानते होंगे। वैसे एक दो कथा तो मुझे भी पता है लेकिन समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर सुनवाती। तो आज अगर आप बलराम जयंती मना रहे हैं तो हमारी ओर से उसकी बधाइयां।
1: Brought to you by Dairy Valley. Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and 0 preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: तो आज 2 सितंबर है और हमारे बहुत सारे साथी याद दिला रहे हैं कि आज अपने जमाने की जानी मानी खूबसूरत हीरोइन साधना जी की भी बर्थ एनिवर्सरी है। तो चलिए आप सभी के लिए साधना जी पर पिक्चराइज ये गाना।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ye hai Laika Radio.
2: Laika Radio.
0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: अगर हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथऑल ट्रैवल को कॉल कीजिए आज ही ऑन 0208-574-8410 पर. साउथऑल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: हॉलिडे ब्रेक्स वर ब्रॉट टू यू बाय साउथऑल ट्रैवल. लो प्राइसेस फॉर फ्लाइट्स, होटल्स और हॉलिडे पैकेजेस. विजिट southalltravel.co.uk. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव. This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to laikaradio.com and listen via the website. If you like what you hear.
1: Laika Radio.
4: From South Old Streets to the London Rain. From the Tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment. Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows, and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
5: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू. और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99.
6: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410. दैट्स 0208-574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
8: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-6333 or visit mantraholidays.co.uk.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
10: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली.
11: Back and it's bigger.
12: Laika Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
11: On Sunday, 1st November 2026, at the Ramgarhia Centre.
12: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
11: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
13: जो कर्ण जन्य हुआ था वह बिग बॉस में दोबारा होगा.
12: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE396.
0: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
14: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. he'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
0: Did you know you can advertise on this station? Leica Radio Midlands, plus our other offerings. Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at leicamedia.co.uk.
15: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavours from around the world, you can make every meal memorable.

0: फिर अब खत्म हो गई है, लेकिन वो बिंदास वापस आई वो 3 साल के बाद। क्या क्या हुआ वो मैं आपके साथ बात करूंगा, बाकी तो आपको सब कुछ मालूम है ऑफ कोर्स, कब जन्मी और कब दुनिया से चली गई, तो ये सब बातें हम नहीं करेंगे, छोटा सा एक सेंटेंस में कर लेंगे, लेकिन आगे जाते हुए मैं उनके बारे में थोड़ा सा दोहराऊंगा कैसे उनके हस्बैंड से मिली वो। एंड ऐसी कहानियां दिलचस्प होती है जो शायद कभी कभी विकिपीडिया में ना हो, गूगल में ना हो, तो कुछ बातों का मजा आता है। मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड LaikaGold.com, ऑल्सो 421st day of Leica Radio Midlands. और DAB की बात आती है तो बर्मिंगम वालों हम अवेलेबल हैं, तो सुनते जाइएगा और लुत्फ उठाते जाइएगा। मेरे बाद 4 बजे होंगे सैंडी शाह ऑन ड्राइव टाइम, एंड सिमिलरली ऑन Leica Radio Midlands इट्स गोना बी राज पत्तन। सो एंजॉय द शो विद मी अप टू 4 PM.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: The rates I am looking for is your £1 in British sterling, which can get you 127.65 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online, or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
1: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396. One performer.
3: Countless personalities.
1: A whole universe of entertainment.
3: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय।
7: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14-नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबाडोस। खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन, ट्विन शेयर। सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
8: The wait is finally over.
9: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
8: Mirzapur is coming to the big screen.
10: Gaddi na to virasat se milti hai, na siyasat se.
8: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
11: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
8: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, releasing in cinemas 4th September.
12: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: And we have to now start the story of a wonderful personality jinhone bada hangama kar diya इंडस्ट्री में, द मिस्ट्री गर्ल जैसे कहा जाता था. यस, मिस्ट्री गर्ल. एंड व्हाट वाज द नेम बाय विच शी वाज बोर्न? शी वाज बोर्न एज अंजलि, अंजलि शिवदसानी. जी हां, साधना शिवदसानी नाम कैसे हुआ? सबसे पहले शी वाज बोर्न in Karachi, I think it was Karachi, yes it was, and that was on 2nd of September 1941 in Karachi, and it's the 85th birth anniversary of the great actress whose songs we are going to be listening to and whose story we are going to be saying. 85th birth anniversary. If she was alive, she would have been 85 years old today. She was active for 23 years. Well, actually 20 years, dekha jaye to. 1958 se 1981 tak. Par beech mein 3 saal, she was off work or off screen, I would say. Wo kyun tha? Main batata hoon na. बेसिकली देखा जाए तो एक पहली फिल्म जिसमें उन्होंने डेब्यू किया था, देखा जाए तो इट वॉज अ सिंधी फिल्म एक थी, लेकिन हिंदी फिल्मों की अगर बात आए, लव इन शिमला. एक सिंधी फिल्म जो थी वो थी अबाना, 1958 की. वहां एक रुपए की पेमेंट मिली थी एंड स्क्रीन मैगजीन में फोटो भी आई थी. वो फोटो देखकर शशाधर मुखर्जी बड़े प्रभावित हुए वो फोटो देखकर, एंड ही रोप्ड हर इन फॉर लव इन शिमला. और लव इन शिमला में डायरेक्टर थे आर के नैयर वॉज टू बी हर फ्यूचर हस्बैंड. जी हां, एंड आगे जो मैं बात करूंगा इज अबाउट माइग्रेशन. द फैमिली माइग्रेटेड टू बॉम्बे इन 1948 एंड देन श्री 420 1955 की राज कपूर की फिल्म, उसमें देयर वाज एन अनक्रेडिटेड अपीयरेंस. और 14 साल की उम्र में मुड़ मुड़ के ना देख, उसमें भी वो थी. मजा आएगा अगर आप देखोगे और रिकॉग्नाइज करोगे. छोटी सी साधना, यंग साधना. फिर तो आज की तारीख में आंख बंद करके साधना का चेहरा आपके सामने आएगा. सो इट विल बी विद द साधना कट. वो कैसे हुआ था, इन द नेक्स्ट आवर वी शैल बी डिस्कसिंग देम. नेम चेंज फ्रॉम अंजलि टू साधना, वो भी हम नेक्स्ट आवर में डिस्कस करेंगे. लेकिन सो फार वी नो दैट शी स्टार्टेड ऑफ एज अ लिटिल गर्ल इन 1955 विद राज कपूर, श्री 420 अनक्रेडिटेड अपीयरेंस, एंड मुड़ मुड़ के ना देख 1955 में, एंड देन सॉरी व्हेन शी वाज 14 इयर्स ओल्ड. And then Sindhi film Abana, 1958 ki. And then Love in Shimla. That's where her life changed totally. Why? Because she met her heartthrob, her future husband, who was directing the film. Inhone directorial debut bhi kiya tha. She directed a film called Geeta Mera Naam. And then she withdrew from acting. वो फिल्म डायरेक्ट करके, एंड देन द फाइनल देयर वाज अ डिलेड रिलीज फिल्म कॉल्ड उल्फत की नई मंजिलें 1994 में, एंड द ट्रायो ऑफ द मिस्ट्री गर्ल, उसके गाने हम नेक्स्ट आवर में सुनाएंगे आपको. एंड दे आर सॉन्ग्स ऑफ अनीता, वो कौन थी, तीसरी कौन थी फिल्म, याद है आपको? वेल, मैं बताता जाऊंगा, चलो बता देता हूं. मेरा साया, ये तीन फिल्मों में से शी अर्न्ड अ वेरी गुड नेम, लेकिन शी गॉट बीटन बाय द ड्रेडेड डिजीज कॉल्ड हाइपर थायरॉयडिज्म. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. इन द मीन टाइम लेट्स स्टार्ट एंजॉयिंग द सॉन्ग्स ऑफ साधना शिवदसानी ऑन हर 85th बर्थ एनिवर्सरी. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स. एंजॉय.
0: Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Like Radio. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
1: Gold Afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pal, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: From South Old Streets to the London Rain, from the tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment, Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows, and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
4: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert, featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m. Show starts 7 p.m. Tickets book kare demontforthall.co.uk
5: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96, एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
7: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danu Properties London office today on 02 03.

Yes, it's Sadhna. She... Shiv Dasani. एंड फिल्म गबन का ये गीत है, 1966 की फिल्म जिसमें लता मंगेशकर जी ने गाया, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया फॉर साधना. आए रे दिन सावन के. नेक्स्ट सॉन्ग इज असली नकली.

राज खोसला जी ने तीन फिल्में बनाई थी ऑफ द ट्रिलॉजी ऑफ द मिस्ट्री गर्ल साधना, उनमें से ये तीसरी फिल्म मेरा साया, मदन मोहन का संगीत।

क्या गाना है ना, विद द म्यूजिक एंड द सिंगिंग ऑफ रफी साहब एंड आशा भोसले. एंड दिस सॉन्ग वॉज सो पॉपुलर, एक मुसाफिर एक हसीना में, तो उन लोगों ने इस पिक्चर को कलराइज किया था बिकॉज इट गॉट सो पॉपुलर. एंड जबानी यार मन तुर्की. एंड संगीत था ओपी नैयर का और इसकी लिरिक्स शेवन रिजवी ने लिखी थी. एक्चुअली देखा जाए तो जबानी यार मन तुर्की, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ क्लासिकल पर्शियन कपलेट. इट वॉज रिटन इन द 14th सेंचुरी बाई पोएट अमीर खुसरो, वाइल द पॉपुलर हिंदी फिल्म सॉन्ग द सेम नेम इन द 1962 फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना वॉज रिटन कम्पोज बाई लाइक रिटन बाई शेजन रिजवी एंड ओपी नैयर कम्पोज इट. सो ये गाना एंड जो पहला गाना था That was the alphabet one. Yes. और रफ़ी साहब ने क्या उठाया इस गाने को, अलिफ ज़बर. Actually वो क्या होता है, जस्ट लाइक इन इंग्लिश, यू नो, चिल्ड्रन लर्न ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेविड, ई फॉर एडवर्ड, ए फॉर फादर, जी फॉर जॉर्ज, एफ फॉर हैरी, आई फॉर इंडिया, जे फॉर जैक, के फॉर किंग, एल फॉर लंदन, एम फॉर मदर, एन फॉर नोवा, नो फॉर ऑरेंज, पी फॉर पीटर, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रॉजर, एस फॉर शुगर, टी फॉर टॉम, यू फॉर अंकल, वी फॉर विक्टर, डब्ल्यू विलियम, एक्स फॉर एक्स रे, वाई फॉर येलो, जेड फॉर ज़ेब्रा. वो जैसे ए टू जेड होता है ना, वैसे हिंदी में भी होता है, ए से अनार, बी से ये और वो. तो ऐसे ही उर्दू और पर्शियन स्क्रिप्ट्स रिसाइटिंग लेटर्स कंबाइंड विद वाउल्स, साउंड ऑफ जबर, ज़ेर, पेश, ये सब जो प्रोनाउंसिएशन होती है, मैं तो सारे नहीं बोल सकता, रफ़ी साहब डेफिनेटली डिड इट. एंड संग बाय रफ़ी साहब.

0: मैं के है दो गुलाब,
1: एक डोर में होते हैं दो मोती,
0: एक साथ धड़के हैं दो दिल।

0: मैंने आपको पहले भी कुछ कहा था कि सैंडी शाह आ रहे हैं 4 बजे, एंड ही इज हियर. ओके, एंजॉय हिज कंपनी. एंड राजपतन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स. बाली ब्रह्मभट का नमस्कार.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Asha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Weddings, celebrations, corporate events, Ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhundne se lekar incredible themes design karne tak. World class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0208 8390880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering. Ragasan.
2: Listen on Little Garba Stars. Taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Leicester. 1 thi 10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fan. Radio partner, Laika Radio.
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
5: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208 5748410 दैट्स 8574 8410
7: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड
8: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियाँ और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल
9: लेट्स सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस ओकेजन विद डिलीशियस एथनिक नमकीन वैरायटीज ऑफ जयमिन स्नैक्स अलोंग विद इट्स खाकरा मैंगो पल्प सोन पापड़ी एंड पिकल्स
8: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू गणपति बाप्पा मोरिया
10: यू आर बोथ ऑन द सेम रोड सेम टारमैक सेम रूल्स जस्ट अ डिफरेंट नंबर ऑफ व्हील्स मोटरबाइक्स आर इन योर वे They're on their way, just like you. So use your mirrors. Check before you maneuver. And be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety. It's on all of us. National Highways.
11: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
12: Next, Radio Wally's Roller Coaster with Radio Wally on Leica Radio Midlands. Raj Baden.

0: Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: It's time for everyone's favorite ride. The Radio Wally Roller Coaster.
2: बस वेट करने के हैं चार दिन क्योंकि फाइनली आ रहा है बिग बॉस आपके स्क्रीन पर यार तो हो जाओ तैयार मिलने मुझसे ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स.

0: brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Naughty's Night with Radio Wally.
2: बस वेट करने के हैं चार दिन क्योंकि फाइनली आ रहा है बिग बॉस आपके स्क्रीन पर यार तो हो जाओ तैयार मिलने मुझसे ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स द फर्स्ट

0: time for Radio Wally to take you out of this world with a Lazy Lounge special. Like a radio.
1: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kgs for £10.99.
2: Falcon Cash and Carry 82A, Size 10 Street West, Leicester, LE12JU. And 2A, Rollout Cell, Leicester, LE54UN.
3: From Southall Streets to the London Rain. From the Tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment. Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows, and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner Ragasan.

0: लाइका रेडियो।
1: बस वेट करने के हैं चार दिन क्योंकि फाइनली आ रहा है बिग बॉस आपके स्क्रीन पर यार, तो हो जाओ तैयार मिलने मुझसे ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स द कास्ट।

0: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
2: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
1: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11, 11.
1: Call the Danube Properties London office today on 02 03.

0: Breaker Radio.
1: बस वेट करने के हैं चार दिन क्योंकि फाइनली आ रहा है बिग बॉस आपके स्क्रीन्स पर यार, तो हो जाओ तैयार मिलने मुझसे ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स.
2: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: It's back and it's bigger.
5: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
2: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
5: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
2: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
6: ये है लाइका.

0: ये है लाइका रेडियो। Creative's team events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
1: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
3: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
2: डेजर्ट सफारी,
3: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
0: Safo Travel, at all protected.
4: LemFi means quicker and safe way to send money.
5: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
4: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
5: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
6: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
0: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी. Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. The greatest Asian love songs across the Laika Radio.